0: साखी की और निभा बल का अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह. I'm a ridiculous person.
1: I'm stupid. I get my head punched in.